0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Juste à temps pour votre déménagement. Marquez de grandes économies chez Brick. Économisez jusqu'à 1 200 $ sur les sofas, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 15% sur les ensembles de chambres à coucher et de salles à manger, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 50% sur les téléviseurs dont la boîte est ouverte, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés et obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de 499 $ ou plus. Détails et exclusions en magasin. Marquez de grandes économies chez Brick. Plus d'économies pour vous.
2: डेल कार्नेज ने अपनी किताब में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कही है. उन्होंने खुशी के बारे में लिखा है कि हैव यू एवर कम अक्रॉस अ सैड हॉर्स और अपसेट बर्ड्स. नहीं ना, वजह पता क्या है, ये कभी अपसेट होते ही नहीं है. और उसकी वजह क्या है, बिकॉज इनकी फितरत बाकी बर्ड्स या एनिमल्स को इम्प्रेस करने की है ही नहीं, और हम इनसे बिल्कुल ऑपोजिट हैं. हम सारी जिंदगी बाकियों को खुश करने में निकाल देते हैं. हमारी ड्रीम्स, हमारे डिजायर्स, इनको तवज्जो, इनको अहमियत तो हम खुद ही नहीं देते, तो बाकी क्या देंगे. इंटरेस्टिंग है, कभी अकेले में बैठें तो जरूर गौर करें इस बात पर.

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को भी खबर न हो वो बड़ा रहमो करीम है मुझे ये सिफत भी अता करे तुझे भूलने की दुआ करूं तो दुआ में भी असर न हो वो फिराक हो या विसाल हो तेरी याद महकेगी एक दिन वो गुलाब बनकर खिलेगा क्या जो चिराग बनकर जला न हो कभी दिन की धूप में झूम कर कभी शब के फूल को चूम कर यूं ही साथ साथ चले सदा कभी खत्म अपना सफर न हो जी हाँ चाहती तो मैं भी हूँ कि बातों और गीतों का ये सफर कभी खत्म न हो बट वॉट टू डू हैव टू टेक दिस म्यूजिकल ब्रेक एंड आई विल बी बैक वेरी सून विद योर वेरी ओन शो कल्चर ऑफ पंजाब विच इज ब्रॉट टू यू बाय देवदत्ता

विंडोज। अच्छा, यादों की बात करें तो कभी कभार बहुत उदास कर जाती है ये, जाहिर से बात है, क्योंकि आज किया किसी ने फिर से जिक्र तुम्हारा, हल्के हल्के से फिर तुम याद आने लगे, मैं फिर से पुरानी बातों के समंदर में डूबने लगा, पलकों के दरवाजे को बंद किया मैंने जब, आंसू बनकर तुम आंखों से फिर से बहने लगी, बेबसी इतनी कि फिर से मेरे हाथ उठ गए दोबारा खुदा से तुमको मांगने के लिए।

0: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ।
1: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ।
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: बहुत से शायरों ने अपने अपने अंदाज में अपनी सोच के मुताबिक डेफिनेशन रखी हैं हमारे सामने हर मुद्दे पर, चाहे वो जिंदगी हो, मौत हो या फिर मोहब्बत। ख्वाब झूठे किसी को दिखाया नहीं करते, एक बार जब किसी को कह दो अपना दामन फिर उनसे छुड़ाया नहीं करते। उसके इंतजार से भला क्या होगा हासिल, आने का कहकर भी जो आया नहीं करते। रखते हो जो दर्द भरा दिल अपने सीने में, दूसरों का दिल फिर वो दुखाया नहीं करते। दो कदम साथ चलकर जो जुदा हो जाएं, ऐसे लोगों को हम सफर बनाया नहीं करते। किस तरह से गुजरती होगी जिंदगी उनकी, जरा सोच के देखें। पहली मोहब्बत को दिल से भुलाया नहीं करते।

बात करने जा रही हूँ एक सफर की, बीते हुए दिनों की, फीलिंग्स की। हर वक्त हर पल तेरी याद मेरे साथ रही, हर लम्हा तुझे मैंने अपने दिल के सबसे करीब पाया है। तेरे साथ गुजारे हर पल आज भी जब आंखों के सामने आते हैं तो जिंदगी फिर से खिलखिला उठती है, मैं फिर से जी उठती हूँ, तुझे फिर से अपने साथ पाती हूँ, फिर से महसूस होता है कि जिंदगी में कोई गम नहीं। फिर से वापस लौट जाती हूँ उस जगह जहाँ तेरे साथ हंसी पल गुजारे, हंसे खेले और जिंदगी के मायने समझे, कुछ सपने देखे, कुछ वादे किए, इतना हंसे कि गम भूल गए और इतना रोए कि मजबूत बन गए।

0: ऑफ पंजाब दे चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
1: आहो सुनदे यार रोज रेडियो ते
2: सुनो साडे YouTube चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।

0: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: जिन खूबसूरत लम्हों के बारे में सोचती हूँ, जिन्हें मैं याद करती हूँ, वो पल सूखी रेत की तरह हाथों से फिसल जाते हैं। सच्चाई तेज धूप की तरह आंखों में चुभ जाती है, छोड़ जाती है खाली हाथ और आंखों में नमी। और वही यादें और एक वादा, वादा कि ये यादें हिस्सा है मेरा, नहीं जाएंगी मुझे छोड़कर कभी। कल्चर ऑफ पंजाब में मैं प्रीत बातों के सिलसिले को लगाती हूँ एक छोटा सा कॉमा, एंड आई विल बी बैक वेरी सून आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक।

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: अच्छा, जिंदगी एक ऐसा मौजू है, ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर जितनी बात कर लें कम होगी और यकीनन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जिंदगी को और इसके किसी भी पहलू को जनरलाइज तो किया ही नहीं जा सकता। अब देखें ना, किसी के लिए तो जिंदगी खुशियों का ताजमहल है और किसी के लिए अपनी हसरतों का कब्रिस्तान, किसी के लिए सुहानी सुबह है और किसी के लिए ये अंधेरी रात। कुछ को लगता है कि ये बादे सबा है और कुछ के लिए जून जुलाई की झुलसती लू। बहरहाल यहीं खत्म नहीं करेंगे, इस बात को जारी रखेंगे बट इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: अच्छा, अगर ये मान भी लें कि कुछ रंग हमारी किस्मत खुद बन जाते हैं, तो कहीं न कहीं एक सच ये भी है कि कुछ रंग हमें खुद चुराने पड़ते हैं, मेहनत, डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस से। चलें फिर क्यों न आज ये वादा करें कि हम जिंदगी के सारे खूबसूरत रंग चुरा लेंगे। कामयाब ना भी हो पाए तो कोई गम नहीं, कम से कम कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल तो हमारी कोशिश ये है कि अच्छी बातों के साथ साथ आप तक बेहतरीन म्यूजिक भी पहुंचाया जाए आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में, विच इज ब्रॉट टू यू बाय देवदत्त लव।

0: ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।
3: अच्छा, आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी ने खुद ही बता देना है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने पॉजिटिव हैं। मैंने देखा है कि जिन लोगों में खुद लो सेल्फ एस्टीम है ना, दे स्टार्ट जजिंग द अदर पर्सन विद हिज पोजेशंस एंड नॉट बाय हु ही और शी एक्चुअली इज। ऐसे लोग बस यही नोट करते रहते हैं कि आप कौन सी कार ड्राइव करते हैं, कपड़े और ज्वेलरी कैसे डालते हैं, कितने बड़े मकान में रहते हो। डिजाइनर लेबल्स इनके लिए स्टेटस सिंबल हैं, और एक्चुअली मैं तो ये फील करती हूँ कि इनसे अगर ये सब चीजें ले लें तो दिल डाई ऑफ शेम, और वो इसलिए कॉज इनकी जिंदगी घूमती ही सारी इन मटीरियलिस्टिक चीजों के इर्द गिर्द है।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: अच्छा एक बार ये सोचकर बताएं कि ज्यादा बेटर फीलिंग क्या है कि लोग ये याद रखें कि आपकी पहनी हुई ज्वेलरी बहुत महंगी थी, आपके आउटफिट्स बेहद कीमती हैं और आप बड़े बड़े डिजाइनर्स महंगे डिजाइनर्स की क्रिएटिविटी का नतीजा पहने हुए, या फिर ये कि आप खुद एज एन इंडिविजुअल बहुत कॉन्फिडेंट बेहद ग्रेसफुल हैं और लोगों की नजर चाह कर भी आपकी ड्रेस या ज्वेलरी पर ना जाकर आप पर टिकी रहती है। How very smartly dressed. मेरे ख्याल से इस कॉम्प्लीमेंट से तो बेटर कॉम्प्लीमेंट ये है कि how very confident and intelligent.